कल भी इसका भी बेली चा बेले सिलाल उतना चल न चल न चल इस चे चकले कमोन आबानन कवाले और लंग प्रेसियंतो तो पार्टी द चन मजार आबानन कवे कोई कवाली नो तो करन ने से पाता संपेरो कचा कना कर्मेलीना उते बिलिलाश कहोर आरंचिस होने लेबला से पाता